0: ओके जी, टांग से नरगिस और गुलाले हसाम भाई। सलाम टांग में, रात को जबरदस्त बारिश, मौसम ठंडा हो गया है और सब मांग रहे हैं इज़्ना की बेबी प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट इज़्ना प्रोडक्ट जिंदाबाद। थैंक यू सो मच नरगिस सिस्टर, अल्लाह आपको खुश रखे इंशाल्लाह। इंतहा जरूर करेंगे हम सब इज़्ना का, और आप भी करेंगे, और बिल्कुल जी आप भी फाइंदाबाद। कुकु भाई सिंह है, और बिल्कुल जी से ठीक ठाक ये मत तासुस रहेंगे तासुशाए। ओके जी, शीन आसमान सरी सरी। अस्सलाम वालेकुम करे शेबास ने अब्दुल हादी भाई स्टडे मुशे अमुश हम रुया मौरू हाजिरी में उलगवा ओ खना आवाज थी वही ओके दे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अब्दुल हादी साहब। मन ने स्टडे मुशे खैर वाली मुशम खदाई नुजी बिल्कुल सिफर 335 435 15 अक्सर मुंतखल कोई तासु नंबर डी ज्यादा सो इन अंदर थवाई में ब्यादर थवाई में उजल वो गलत आसु नहीं से 435 435 15 वानी राशि मुक्त प्रोग्राम की कॉल उखी और मैसेज उखा। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: आज ही दोस्तों प्रोग्राम के हर के लिए स्टडी मुशी पखेर आली मास रसो को दे चर दाना
1: फिर दीजी जनुमान खबर कम ले ले आबाद
0: अनुमान से तासु तद इज़्ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम के हर के लिए स्टडी मुशी वाय मा
1: फिर दी सर दी
0: अडी रजा था मनन नोबान चिराल ले अमूसरे प्रोग्राम के पर खवागी सलाम
1: सर दी मा सलाम प्रोग्राम डेर मगर आ कई
0: डेर जा था मनन शुक्रिया
1: मुझे खुद का प्रोग्राम स्पेशल आर वो लग जायो खबर पर कब लग जायो खुदा प्रोग्राम मुझे अलग वाला
0: है मन ने उसंग जमुग द इजना आई जेड इन ए इजना अली फजीज रिजुन जरदा इजना कॉस्मेटिक इंतहा मुकड़े के नमो दे कड़ा
1: जी जी आ कड़े मुझे सर जी
0: माशाल्लाह
1: सो गायता
0: माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह और डेरा मानन जी डेरा मानन शुक्रिया
1: ओके ओके
0: ओके जी जान ख्याल साथी डेरा मानन नोमान चिराली प्रोग्राम के बर खवागी सलाम
1: जी जी
0: ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम हसाम सिंह प्रोग्राम मौसम खैसा रवान दे माशाल्लाह और आवाज मुहम सफा रारवान दे मलिका हान यम दे ठांग ने डेरा साथ मन ने शुक्रिया मलिका अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम सरंगे से जुड़े बराबर
0: है आज बिल्कुल जी शैम जुड़ी हम बराबर मुझे रसू खबर क्यों दे चरता ना
1: यम द ठांग ना अब्दुल राजिक खबर
0: कहूंगी द टांग ना अब्दुल राजिक खबर गई अब्दुल राजिक द इज़्ना प्रोग्राम के तहर के लिए स्टडी मुशी पखेर अली वाइमा
1: पखेर इसमा प्रो मुझे इस्तेमाल करी दी पख
0: जता ते मा ता कम प्रोग्राम तकाल कड़े ता द इज़्ना प्रोग्राम तकाल कड़े सही रहा
1: हाँ
0: सही शो
1: हाँ सही शो
0: ओके जी کله هم تاسو لګ پته نه لګی چې لګ دې آواز ته وګ دی ښا چې دا آواز د چا دی

अनुसासु काजबहुम जान सिर्फ सिफर 335 435 35 15 इन सिफर दुआ फेरी द्री पिंजर सलूर द्री

ओके जनाब, हृदय में लबास रोटेशन हेडेड फूड क्रीम हो में से मिला विश थोड़े जी चला सख पे मत स्पिन शी छ तवरो तरह ने मारे तरह ने तो बिल्कुल जनाब इस्तेमाल के नो टेंशन हेडेड फूड क्रीम शा सलाम खुश भाई रहो शोर और जमा से राज में फैसा छुट्टी खोर सर हसीन गुल हम प्रोग्राम और इसी और प्लीज विटामिन सी फेस वॉश मस्ती के लरा से रोज रोगल है दशा से मार्केट से अवेलेबल है से पर भाई मैं पुरन तपस करे देसी پرون مزیگار دارو خلا در شد خوش بایین قسم چه انتظار مستی استرگی برتا سوینش خواه راگ رو سرمی سوید

अस्सलाम वालेकुम, बाय हाउ आर यू, बाय क्रीम एंड फेस वॉश आया है कि नहीं, सबको सलाम। आई एम जुया जुया जमा खुरे नो टेंशन डायमंड फॉर्मूला क्रीम हरो वाली दीसी वेरसरा वेटमसी फेस वॉश हरो वाले दशा मिला विशेषा।

0: तो किसी भी खबर की मिलेंगी और पकड़ की हानि। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, स्टडी मशो बिल्कुल सुनेंगे शेर सी
1: जी
0: प्रोग्राम मंजी ने है अच्छा टांग तरोग ले लीजिए यानी पुसन अकड़े रहो नहीं दिया
1: जी भाई का सख्त कलर नहीं
0: रहो ना ना जहां जी के द टक खलक दे मैं प्रेश दे
1: जी भाई
0: जो टक खलक दे जी मैं प्रेश दे
1: एक ना प्रेश दे
0: बस अखल पूरी सुख देने प्रेश दे
1: मैं के रस्ता
0: सगर मेरा जगह जी तो समझना बिया पट शे का ना मुंगे खवेन दी रुणा प्रेश दिया तो से ना पट शे पस गलत लोड शे ब्याह गर्मी थे ना वो सर्द है तरह उस मौसम चिंचकी से रवान है सही था जी विटामिन सी फातश था तक नष्ट था न्यूट्रिशन फेस वाश गुड डायमंड फॉर्मूले क्रीम है ना हर समय हिरकड़ी भी सरा कड़ा दे रोड़ी दो न्यूट्रिशन विटामिन सी रोड़ा शान नो नो फेस वाश रो गला था इफ्तिता है वो कर शादो बस जरूर पुछता विटामिन सी फेस वाश तो ना रोगा लेता शाह
1: जी भाई
0: मना खुशहाल से खुरु के दर मन से ओके डेरा मन से खुशहाल से थैंक यू सी।

ऐसा शैम से बिल्कुल वाय खा खोरे और बोलो ऐसी आपके न्यू फेस वॉश के लिए है आई एम सबियो सभी जमा खोरे डेरे मना खुशहाल है और बोलो ऐसी या फो डेरे मना चा तो बिल्कुल यू बर कलर दे रहा सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कूर दिया बात से शाबाद जी को दिया दसरो का नंबर डाक शक खबर है कवा के ना साल में लोग ऐसी किसी दिन वही ना बुद्धे मुसलमान है शागिश खबर है कवा शा यानी बस किसी दिन वही ना जिया बस खबर तुमको पिटी साल मामा से कितने कल कल बेबो

रोशन सलाम वालेकुम भाई जान सिंह वेलकम बखीर आली और सलाम सब सिस्टर को शाजी मरवड़े रे मनजे हम मनाल से मखूर पतनिश्ता हा और कैसे लेदा शाम कुछ भाई हसीना यदवा चिताता चिता दा हसीना नाम वाखले समा खान दी खुशाल शकड़े रे मनन से सारा मिसूद सही हा हसीना जमा कुर्सी डी रे मन तो जमीश प्रोग्राम और वेशा डी रे मन से टेंशन वेट अमन सी फेस वॉश वाला शा हसीना कुर के जाड़ा शा जाड़ा ते मत नो टेंशन विटामिन सी फेस वॉश कुर के लते टकवा शा लते टकवा दे मत शाबा विटामिन सी फेस वॉश निवान मन वशा उलन से कवा शा वाड़ मजी वाड़ मान टेंशन वेट मंसी फेस वॉश वाड़ मान ये वो खबर है मने वशा ठीक है जी या बता सुना मिल वर्षी के मजी ना नए दत्तर रेशा जब जाने जड़ा नमक आ रखली ठीक है जी तो बस बात है कि मामा मामू चरता है तो इधर जाड़ा जड़ा लजुर वर कैश जी हाँ हाँ भाई शो सुन रही हूँ आया मना लो गुरा मना जमा खुर गया बना मन मुंगे गुरा फैन दी मत याद विशा तुम्हारे गुरा जमुंगा फैन दी कम से रुकी दी कम से ने दिशा आखो मडेरा मदद की जीचे वरा कसले दा कम शाविचे वजरिस्तान तो दिले दा गुरा सुरान अगले के ना मदद पता बोले गिदा से मजगो सटक ना खुदा पैका मनाल से तरुक दा शा सो के जी और दुन टाइम रे सर परेशान पोटेंशियल विटामिन सी फेस वॉश नैलवा और वर्सरा वर्सरा न्यूट्रिशन डायमंड फार्मूला क्रीम सुन को मिला विश रवायख ले को मार्केट की दिसी हूं उस लार से जानना प्रोडक्ट्स अवेलेबल के हां जी तो प्रोग्राम टाइम में और तेरा खत्म शो चलता वो से खाद उसे आबाद उसे पडोल नजमर ब दुआ गानों के आते दे हम बड़ा खबर आके चे दर्जनों से गानों फोक रस गाने तली रातले मरगी लड़की ने ब्लूज मरगे बिना नए ना शुक्र सर बजे मुलाकात को अल्लाह से मन से और कह सकते शबीर आशम खास जैसे लेकिन सिर्फियात ही नहीं चला रहा समझी लिखा भारत जी बाय बाय टाटा एंड लव यू ऑल थैंक यू खामोश रहना दलील अपमान और क्या टाइम पर खैर

आपके साहें केसर मोबाइल जोन मंगल मेला मलिक इलाज मार्केट के तमाम प्रोडक्ट मिलाई हुई है दुकान पोजिर के लिए अल तवसर हम मिलाई हुई जावेद शाही तंगीना बाजवाना सरता सलाम अलैकुम सलाम हर प्रोडक्ट मंग सरा मिलाई हुई जमंग यादवा जावेद शाही तंगीना तो प्रोडक्ट में सरा मिलाई हुई की जिले बाजवाड़ जावेदी पकोर के खान सलाम अलैकुम इस्लामुद्दीन कोड कटना और वाइच इशमा जिंदाबाद इनाम बिता तमें सलाम दे और जरा कोरकट नयम वालेकुम सलाम आयशा दशीदुना हाय इनाम खाना आई एम तलकीन लब इशमा प्रोडक्ट मेरी नुई सलामुने में केवल का वालेकुम सलाम सलाम अलैकुम माय फेवरेट आर जे स्टार इनाम मामू वेलकम मैनेजर से तबियत दी संग दे शो दी और अवाम जबीन भाई वॉइस बिल्कुल क्लियर दे रेडियो वन इट इज मी यूर फैन साइमा एहसास एंड आसमा एहलास फ्रॉम चराड रोड माजर बाजार के जुबैर कस्मेटिक्स तमाम प्रोडक्ट मिलावी हाँ।

0: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 and Radio Aman 88.4. जी जनाब, सुबह के चार बज चुके हैं जनाब, चार बजते ही आपकी समातों की नजर आपके अपने रेडियो स्टेशन पर कैसे नेचुरल पाकिस्तान की आवाज, कैसे नेचुरल पाकिस्तान का रेडियो शो बरहरास लाइव इन लाइव शो केस एन टी टाइम के साथ मैं हूं आपका मेजबान कलिंग ढाबे शवान।
1: आल चिराग इश्क दा यारा रोशन मेरी रू कर दे, मैं मेरे नू मार मुका के विच तू ही तू।
0: जनाब सुपैर की चार बज चुके हैं और जनाब चार बजते ही जनाब आपको कैसे नजर पाकिस्तान का कैसन टी टाइम सुनने को मिलता है। तो आज भी आपकी समातों की नजर बुध का दिन है जनाब 16 सितंबर 2026 और इस वक्त ग्लोबल एफएम 91 डेयर इस्माइल खान और रेडियो अमन से मेरा प्रोग्राम आप सुनने जा रहे हैं कैसे नेचुरल पाकिस्तान। आप लोगों के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स बना रही है जनाब जो आपकी खिदमत में हम लेकर आते हैं और यही वजह है कि हर रोज तीनों स्टेशन पहाड़पुर टांग और डेरा से हम आप लोगों के लिए बरह रास्त प्रोग्राम पेश करते हैं। हम बरह रास्त प्रोग्राम करने का मकसद क्या होता है, हम चाहते तो हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड शो रिकॉर्ड करके भी हर रोज आप लोगों के लिए जो है या फिर कमर्शियल बनाकर भी आप लोगों के रूबरू पेश कर सकते थे, लेकिन हर रोज ये परेशानी उठाना ये दिक्कत उठाना कि तीनों स्टेशन के ऊपर लाइव आप लोगों से मुखातिब होना, मकसद ये होता है कि हम आप लोगों को जो प्रोडक्ट दे रहे होते हैं उनका फीडबैक बहुत जरूरी होता है, उनका जनाब आपका रिस्पांस जरूरी होता है और यही आपका रिस्पॉन्स जो होता है किसी कंपनी को जो है ऊपर लेके जाता है, उसकी कामयाबी की वजह बनता है या उसकी नाकामी की वजह बनता है। हमारी तरफ से हर मुमकिन भरपूर कोशिश होती है कि केसन के प्लेटफॉर्म से आप तक जो भी चीजें पहुंचे वो नेचुरल प्योर और खालिस होनी चाहिए और खालिस चीजों को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ढेर सारे जो है रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स के अंदर मिलते हैं और यही वजह है कि आप केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमने एक ऑफर अभी चलाई हुई आप लोगों के लिए और ऑफर कौन सी है जी जनाब, वो ऑफर ये है कि जनाब आप जो केसन के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, जरूरी बात है कि आप उनके खाली रैपर्स भी होते हैं, उनके डिब्बे भी होते हैं, उनके बॉटल्स भी होती हैं, उनके जार्स भी होते हैं, तो आप लोगों ने हमारे पास जमा करवाने हैं। उसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम उनको रिफिल करेंगे या उनको उनके अंदर फिर से चीजें भर के रिसाइकल करके आपको देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा नहीं होता हमारी कंपनी के अंदर। ये हमारी जो मशक है, ये जो हमारी एक्सरसाइज है, ये सिर्फ इसलिए है कि एक तो हम हर लिसनर्स को जांचना चाहते हैं कि भाई कौन से फैमिली को हमसे कितना प्यार है, केसन से कितना प्यार है और वो केसन के कितने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, और साथ में हम ये भी देखना चाहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा आप लोग हमारे किस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। वैसे तो हमें पता है कि भाई केसन नेचुरल पाकिस्तान की दो प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा इज्जत हासिल है, वो है केसन का हेयर ऑयल और केसन का शैम्पू। ये वो दो प्रोडक्ट हैं जनाब जो केसन की बैकबोन है और कंपनी का स्ट्रक्चर, कंपनी की लोगों की तनख्वाहें, सारा कुछ इन्हीं प्रोडक्ट्स की बदौलत होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है आप लोगों की। और वजह क्या है, मैं आपको बहुत दफा ये बात बता चुका हूँ कि जब हमने केसन हेयर ऑयल लॉन्च किया था तो उस वक्त मार्केट का सबसे महंगा ऑयल था, तो बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे जो हैं वो मुझे कहते थे कि खलील भाई इतना आप उस 660 रुपए इसकी कीमत थी, 150 ml में हमने इसको लॉन्च किया था 660 रुपए, तो उस वक्त बड़े बड़े ब्रांड भी 350 रुपए के थे, बड़े बड़े ब्रांड 350 से ऊपर कोई नहीं था। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई हमने अगर इस 660 रुपए की कीमत रखी है तो इसके अंदर इतनी चीजें हैं, तो हम आपको कहते हैं कि भाई ये बालों का स्पेशलिस्ट है। केसन को आप लोग जान चुके हैं, केसन कंपनी का मिजाज क्या है, आपको हम हर मसले के लिए एक स्पेशल फार्मूला देते हैं, ठीक है जनाब, एक स्पेशलिस्ट आप लोगों को हम फार्मूला देते हैं कि जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको मतलूबा नतीजे मिलते हैं। ये नहीं कि अगर आपको बालों का मसला है तो हमारा ये जो हेयर ऑयल है ये पीने के लिए नहीं है, ये लगाने के लिए, ये मसाज करने के लिए नहीं है, ये सर पर मसाज करने के लिए है, कहीं और जगहों के ऊपर मसाज करने के लिए नहीं है, ये पीने के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ बालों में लगाने के लिए है। तो इसके अंदर हमने जितनी चीजें डाली हैं भाई उनको ताल्लुक आपके बालों को खूबसूरत बनाने से है। 17 अज्जा शामिल हैं केसन हेयर ऑयल के अंदर 17 अज्जा, और ये 17 अज्जा क्यों हमने डाले हैं? मुख्तलिफ मसाइल, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे मसला है, बाल आपके घने नहीं हो रहे मसला है, बाल आपके बेजान हो गए हैं, रफ हो गए हैं, ठीक है जनाब, खुरदरे से हो गए हैं, बहुत बड़ा मसला है, बाल आपके बालों के ऊपर चमक नहीं आ रही मसला है, आपका बाल आपके स्ट्रेट नहीं है, बाल आपके दो मुंह हैं, या आपको हेयर फॉल है और हेयर फॉल है, या फिर आपको खुश्की है, सर में खारिश है, ये सारे मसले हैं भाई, जिसकी जिनको देखते हुए हमने केसन हेयर ऑयल डिजाइन किया है। और इसका स्लोगन है, 4 लफ्जों का स्लोगन है, ये तेल नहीं सोना है, ठीक है जनाब, इस तेल के ऊपर लिखा होता है ये तेल नहीं सोना है, ठीक है जनाब, ये एक जुमला आपको बताता है कि ये कितना कीमती ऑयल है, ये कितना कीमती ऑयल है कि जिसका जिसकी टैग लाइन है ये तेल नहीं सोना है। इसका जो टैग होता है उसके ऊपर भी यही बात लिखी होती है, आप जब बॉटल खोलते होंगे, इसका जो लीफलेट निकालते होंगे उसके ऊपर भी यही बात लिखी हुई है, ये तेल नहीं सोना है, ठीक है जनाब, इसका जो पैक है उसको आप देखते होंगे उसके ऊपर भी लिखा हुआ है ये तेल नहीं सोना है, हर जगह ये बात लिखी हुई है। और आपके जहन के अंदर हम एक चीज घुसाना चाहते हैं कि भाई ये तेल नहीं सोना है।

ये जब भी मैं कलाम सुनता हूँ मैं इस जगह पर ठहर जाता हूँ। ये कहता है कि मक्के मदीने जाके घूम फिर के आ गया और खुद को कहला दिया हाजी। बहुत मजे की बात है यार। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, मक्का मदीने जाकर ना घूम फिर के वापस आ जाते हैं। मैं एक तहरीर पढ़ रहा था कि एक आपका उम्रा ऐसा भी होना चाहिए यार, किसी को पता भी ना हो और आप उम्रे पर चले जाएं। ठीक है जनाब, कोई सेल्फी ना हो, कोई वीडियो ना हो, अपने प्यार मोहब्बत से उम्रा की अदायगी करके आए और किसी को खबर तक ना हो और आप वापस आ जाए। कहते कोई एक उम्रा ऐसा भी कर लो यार, ये हकीकी उम्रा होगा। यहाँ पर तो बस एक रिवायत बन चुकी है ना जनाब, उम्रे पर कोई जा रहा है तो फिर उसको अलविदा करना, हार पहनाना, वापसी पर आए तो खानों का इंतजाम करना, दावत करना, ये करना। और आजकल जो है सिलसिला ऐसा बन गया, मोबाइल साथ में है तो एक एक लम्हा कैप्चर होकर भी आ रहा होता है कि फलाम बंदा इधर है। तो इन कामों में ना कहीं रियाकारी आ जाती है। इस तरह के जब हम काम करते हैं ना तो ना चाहते हुए भी ना कहीं रियाकारी जरूर आ जाती है और खुदा को चींटी के बराबर भी रियाकारी पसंद नहीं है। ठीक है जनाब। और रियाकारी कहते हैं कि ये चीज ही ऐसी है कि रियाकारी जो होती है, दिखावा होता है, ये उस चींटी की मानंद है जो चल रही होती है और उसकी पांव की आवाज भी आप तक नहीं आ रही होती। यानी कि बाजू का हम रियाकारी कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि हम रियाकारी कर रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, दिल में ख्याल आया, कोई बंदा देख रहा है, नमाज को लंबा कर दिया है जी ना। कि अगला बंदा सोची और बड़ा हाजी काजी है यार, लंबी लंबी नमाज रकाते में पढ़ते हैं। उम्रे पर जा रहे हैं तो सेल्फी की सेल्फियां लग रही हैं जनाब, हर जगह की सेल्फी लग रही है, वीडियो आ रही है। ठीक है, ये अब रिवायत बन चुकी है, उसको खत्म किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी के बस में ऐसा है ना, वो एक दफा ऐसा करके देख लो। लोग चार चार पांच पांच उम्रे भी करते हैं। चलो एक उम्रा ऐसा कर लिया तुमने, सेल्फियां बनवा ली, हार पहन ली, लोगों की रोटियां खा ली, खाने खा लिए, एक उम्रा ऐसा भी करके जाओ यार जो किसी को पता ना हो। चुप करके जाओ, चुप करके आ जाओ और फिर वो कैफियत बताना लोगों को कि भाई ये वाला उम्रा मेरा कैसा था। एक वो उम्रा जो मैंने रोटियां खाकर, खाने खाकर, दावतें खाकर, हार पहनकर, हैं जी, कपड़े लेकर और लोगों के खर्चे करवाकर उम्रा किया। एक वो जो बस मेरे दिल की तलब थी, वीजा बनवाया, टिकट ली, निकले, वहां पर पहुंचे, कोई सेल्फी कोई वीडियो नहीं बनाई, उम्रा करके वापस और दूसरे दिन दुकान के ऊपर बैठ गए, दूसरे दिन नौकरी पर चले गए, किसी को पता ही नहीं चला बंदा किधर था, बीमार था, कहीं गया हुआ था। एक उम्रा ऐसा भी कर लो यार, फिर इस उम्रे की बात ही कुछ और होती है। जनाब मुझे कहते हैं खलील साहब, शमान हुई है केसन का टी टाइम शो। बात कर रहे थे जनाब आपके बालों के मसाइल की और ताकत प्लस आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। शिफायत दर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे अभी शो से पहले ना एक बहन ने मैसेज किया और उसने एक बात लिखी हुई थी कि आजकल हर पांच खवातीन के अंदर जो है तीन खवातीन को घुटनों का दर्द है। बिल्कुल हकीकत है, ऐसे ही है। और उसमें ऑस्ट्रिच ऑयल का जिक्र था तो वो कह रही थी कि आपका भी ऑस्ट्रिच ऑयल है। मैंने कहा जी बिल्कुल, केसन का जो शिफायत दर्द है वो ऑस्ट्रिच ऑयल है। ऑस्ट्रिच ऑयल क्या होता है? ऑस्ट्रिच ऑयल बोलते हैं शुतुरमुर्ग की चर्बी से हासिल किए गए तेल को। बहुत दफा मैं आपको बता चुका हूँ कि इंसान के जिस्म के अंदर एक ऑयल होता है, वो ऑयल हमारे जो शुतुरमुर्ग का तेल है उसके अंदर बहुत ज्यादा मुमासलत रखता है। ये वजह है कि वो बहुत जल्द आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है और काम करता है। तो जनाब बहुत शुक्रिया, शिफा दर्द को भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हाजमा कंट्रोल सिरप भी पी रहे हैं, केसन जाफरानी क्रीम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, केसन ग्लूटा वाइट क्रीम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, केसन के साबुन इस्तेमाल कर रहे होंगे, कोई जाफरानी सोप इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई राइस शाइन इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई मिल्की साबर इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई ग्लूटा वाइट इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई कोजिक एसिड इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई कोई जो है उपटन और कोई जो है राइस शाइन। तो टांक वालों से मैं कहूंगा भाई, टांक वालों फर्स्ट टाइम आपके शहर में पहले तो जफरानी साबुन मौजूद था, मिल्की साबुन मौजूद था, ग्लूटा साबुन जो है मौजूद था, गो पिंपल मौजूद था। ये चार साबुन आप पिछले चार माह से इस्तेमाल कर रहे हैं और मुतमईन होंगे तीन नए साबुन हमारे केसन उपटन सोप, केसन राइस शाइन सोप और केसन का जो है कोजिक एसिड सोप जो कि चाइयों को खत्म करने वाला साबन है, वो आपके शेयर टैंक में पहुंच चुका है।

0: जनाब, बालों के मसले बहुत सारे होते हैं और बालों के मसलों के लिए एक खास तेल की जरूरत होती है, खास तेल जो कि आपके सारे मसलों को हल करे। केसन हेयर ऑयल इतना पावरफुल फार्मूला है और इसलिए हम कहते हैं ये तेल नहीं सोना है। ठीक है जनाब, ये तेल नहीं सोना है। वजह ये है कि इसके अंदर 17 अज्जा हैं जो मेरे ख्याल में आपको मार्केट में किसी भी और ऑयल के अंदर नहीं मिलते हैं, जो केसन नेचुरल पाकिस्तान के इस ऑयल के अंदर मौजूद है। 7 किस्म की जड़ी बूटियां और 10 किस्म के तेल, यानी कि ये दादी नानी के नुस्खों वाला तेल है भाई। दादी नानी आपके घरों के अंदर जो नानियां मौजूद है, माशाल्लाह अल्लाह उनको आपके घर की रौनक को सलामत रखे, दादियां मौजूद होंगी, नानियां मौजूद होंगी, तो ये भी इनके पास भी बड़े फार्मूले होते हैं। सीका का एक कूट लो, आंवले का ये ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सारे आपको नुस्खे बताती रहती है और अपनी नवासियों की पोतियों की जनाब बड़े बड़े बाल देखना पसंद करती है, क्योंकि उनके अपने बाल इतने प्यारे होते हैं तो वो कहते हैं मेरी नवासी के बाल क्यों बड़े नहीं हो रहे, मेरी पोती के बाल बड़े क्यों नहीं हो रहे, तो कहते हैं कि खुराकें तुम लोगों की वैसे नहीं है। और फिर वो कहती है अच्छा बेटा इधर ले आओ, इधर कागज ले आओ, पेन ले आओ, मैं तुम्हें अपना नुस्खा लिख के देती हूँ। आंवले का तेल लेके आना है, रीठा लेके आना है, सिकाकाई लेके आनी है, तेज पात लेके आनी है, बाल छड़ लेके आने हैं, ठीक है जनाब, नारियल का तेल लेके आना है, जैतून का तेल लेके आना है, गरी का तेल लेके आना है, तिलों का तेल भी लेके आना है तुमने, पुदीने का तेल भी लेके आना है, ठीक है जनाब, रोजमेरी का, ये सारे लिस्ट बनाकर वो देती है अपनी नवासी को, अपने अब्बू से कहो ये सारी जड़ी बूटियां मुझे मंगवा दे, मैंने तुम्हारे लिए तेल बनाना है जो तुम्हारे बाल मेरी तरह बड़े हो जाए। तुम लोगों की खुराक ठीक नहीं है, तुम्हारे बाल बड़े नहीं हो रहे, अभी से तुम छोटी हो, तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है, हमें तो हेयर फॉल कभी होता नहीं था क्योंकि हम ऐसे तेल इस्तेमाल करते थे। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि दादी और नानी वाला नुस्खा जो है वो केसन के पास है और सिर्फ केसन के पास है जनाब, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो 17 अज्जा पर मुश्तमिल है। और ऐसी चीजें, ऐसी जड़ी बूटियां जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना होता, वो भी केसन के हेयर ऑयल के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि ये तेल आपको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देता है। 24 घंटे का मुराद क्या है, यानी कि आपने एक दिन इसको अपने बालों में लगाया, ठीक है जनाब, इससे पहले आपके बाल कैसे थे, सिल्की थे, नहीं थे, मुर्दा थे, बेजान थे, बेजान बाल हो जाते हैं क्या, वो तब बेजान होते हैं, तब बेजान होते हैं जनाब जब आप बार बार अपने बालों को कलर करवाते हैं, ठीक है जनाब, कलर जो केमिकल होते हैं उनके अंदर बहुत सख्त किस्म के हार्ड किस्म के केमिकल होते हैं जो आपके बालों का गला घूंट देते हैं, आपके बाल बेजान कब होते, बेजान बंदा कब होता है जब कोई आपका गला घूंट दे, तो ये जो कलर्स होते हैं केमिकल वाले ये आपके बालों का गला घूंट देते हैं। ये जो आप हेयर स्ट्रेटनर करते हैं, हीट से आप अपने बालों को सुखाते हैं या हीट वाले इंस्ट्रूमेंट से यानी कि हेयर स्ट्रेटनर से जब आप अपने बालों को सीधा करते हैं तब भी आपके बाल बेजान होते हैं, ठीक है जनाब, या आप रंग कलर करवाते हैं, मेहंदी वगैरह लगाया करें वो अच्छी बात है, लेकिन आप जब कलर करवाते हैं और कभी बरगंडी कलर, कभी आपने गोल्डन करवा लिया, कभी क्या करवा लिया, मैं आपको एक दिन बता रहा था कि मेरी मिसेस को ना बड़ा शौक हुआ कि मैंने ना वो कराने हैं, उसके भाई की शादी थी, तो वैसे तो जब माँ बन जाए कोई तो उसको इतने शौक नहीं रहते हैं, लेकिन जब भाइयों की शादी हो जाए तो वो फिर से जवान होना चाहती है, वो कहती है कि मैं एक दफा फिर से ना लड़की बन जाओ, पता नहीं क्या रखा होता है भाई की शादी में, कहते हैं भाई की शादी के अंदर एक दफा फिर से जो है जवान नजर आना चाहिए। तो मुझसे कहा कि ना मैं अपने बालों को ना ये कलर करवाती हूँ, मुझे कलर दिखाया एक थोड़ा सा पर्पल कलर का था और इस तरह सब मेहंदी शेप था, तो मैंने कहा ठीक है करवा लो आप। तो वो जब ब्यूटी पार्लर वाले के पास गई तो उसने कहा भाई ये तुम्हारे बाल ना फिर केमिकल से हम व्हाइट करेंगे, हैं जी सारे के सारे बाल जो है ना ये केमिकल से पहले हम इसको व्हाइट करेंगे, क्योंकि इन काले बालों के ऊपर तो कलर कोई नहीं चढ़ता ना, ठीक है, अगर सही कलर तुम्हें देखना है तो पहले हम केमिकल से आपके सारे बालों को व्हाइट करेंगे और व्हाइट करने के बाद जो है फिर ये कलर चलेगा। तो मेरी मिसेज ने फौरन मुझे कॉल की, मैंने क्या पता नहीं क्या हो गया, कॉल पे कॉल आ रही थी, मैंने उठाया, कहती यार ये तो मुझे कह रही है कि पहले सारे बाल सफेद करने पड़ेंगे फिर कलर चढ़ेगा, मैंने कहा वापस आ जाओ, शराफत से वापस आ जाओ, मैंने कहा बालों का कबाड़ा नहीं करा ना, केसन ऑयल लगा के तुमने 30,000 का ऑयल लगा लिया होगा इन बालों को प्यारा करते करते, और अब इनको तुम इनका बेड़ा घर करवा रही हो, इनको केमिकल से व्हाइट करवा रही हो, तो मेरी मिसेज जो है वापस आ गई, तो भी मैं नहीं करना क्योंकि बाल मुर्दा हो जाते हैं जब केमिकल से आप अपने बालों को व्हाइट करवाते हैं फिर उसके ऊपर कोई और कलर डाई करवाते हैं। तो जनाब अगर आप ऐसा करवा चुके हैं और आपको बाल सख्त लगते हैं तो आप हमारा ऑयल इस्तेमाल करेंगे, आपके बाल फिर से रिस्टोर हो जाएंगे, करेंगे आपके बालों की जो नरमी है फिर से वापस आ जाएगी, आपके बालों के अंदर फिर से एक जान आ जाएगी। तो केसन हेयर ऑयल आपके बालों का कलर बहुत प्यारा कर देता है, ये बालों का कलर डार्क करता है। डार्क ये मतलब नहीं होता कि सफेद बालों को ये व्हाइट कर, सफेद बालों को काला कर देगा, बल्कि बाजूकात कलर जो होते हैं ना डिम होते हैं लोगों के, खराब पानी से नहाते हैं, जैसे टांग के लोग हैं, टांग के लोगों के बालों के बड़े मसले होंगे भाई। मैं टांग वालों से बोलूंगा भाई, यकीन करो अगर आपको अपनी खूबसूरती फिर से चाहिए, क्योंकि खराब पानी से ही बाल खराब होते हैं, बालों का कलर भी खराब होता है, बाल कमजोर भी होते हैं, दो मुंह भी होते हैं, उनके अंदर जान भी नहीं रहती, शान भी नहीं रहती। देखो फरमान भी बता रहे थे कि भाई मैं पिछले एक हफ्ते से आपका शैम्पू ऑयल लगा रहा हूं, मेरे बालों के अंदर तो चमक आ गई, चमकीले से हो गए। सो भाई ये टांक वालों के लिए तो किसी नेमत से कम ऑयल नहीं है, ऑयल और शैम्पू, क्योंकि शैम्पू का मैंने आपको बताया है कि ये वाइल फार्मूला है जो खराब पानी के असर को भी खत्म करता है। खराब पानी, हार्ड वाटर, नमक वाला पानी, ठीक है जनाब, इस तरह के पानी जो होते हैं उन मसाइल को ये खत्म करता है और आपको खूबसूरत बाल एक दफा फिर से मिल जाते हैं। आप लोग हमें कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0344-936-3366 और एक कॉलर आ चुके हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, हाल सुना खलील भाई?
0: जनाब यूसुफ खान सन्नाल मौजूद इनसे, किमें हाल है चंगे देवे तुसा?
1: खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी सेहत तबीयत की है?
0: मेरी तबीयत सेहत बिल्कुल चंगी है जरा, मेरी तबीयत सेहत चंगी नो सी बात में प्रोग्राम करने ना समझ समझ में जाए कि कोई मसला ठीक है बिरा दे नाल।
1: ठीक ठीक भैया,
0: शुक्र है अल्लाह। प्रोग्राम सुनते वे देवे, मौसम चंगे है तुम्हारे पास?
1: मौसम चंगा है, मैं तो यम जरबत खान आज दे पास है।
0: अच्छा जी, बात को गिला है उन्हें?
1: ना गिला कोई को नहीं, को हिक्का तब क्लास संभाला मैं इसको।
0: अच्छा ठीक है,
1: एक पेट का मरीज ये पक्की एक तेल नहीं होगा
0: वाला तेल घिन छोड़ा वजह जैसा जिक्र करें ले बैठे हैं। गिफ्ट मिले
1: कितने
0: बिल बना, कितने का बिल बना? तकरीबन 1500-1600 तो बड़ा हो सी।
1: हाँ जो 450 तेल दिता,
0: ठीक है
1: ते थकी कह रही है 400 ते दी थी, ते एक कह रहा था या 500 प्लस या गाना ताकत प्लस
0: है, ताकत प्लस है 900 ते हम तो को देना चाहिए था। वैसे तो सुनो उन्होंने को बन जाए तो गिला करे जरूर, ठीक है
1: यार ऐसा का खास काम तरीका थी नहीं
0: नहीं ना देख जेरे हिक शियासत को देती पे है कि भाई 2000-1500-2000 तक एक परफ्यूम मिलना है तो देना चाहिए उन्होंने को ना। उन्होंने आप आखा है कि भाई कस्टमर जेरे तो आंदा है इतने तक गिनसी था सानो को एक जेरे सेंट है ना छोटा वो फ्री दे सु तो देना चाहिए हर को ना। बस अगली दफा मन जाए तो गिला करे कि खलील भाई मैं गाल करवाए मुजीब नाल, ठीक है?
1: ठीक ठीक,
0: आवाज तो कौन सा लगा से बाकी तो सा तेल को इस्तेमाल करो ते इंशाल्लाह बस आपको दिसा है जो तेल की में शैम्पू टाइम मिले तो जरूर घिन घिने, बल्कि अगली तो बन जाए शैम्पू घिने 2000 पूरा थी वैसी तनाल सेंटी गिदी हवा उन्हें देखो सारे आला, ठीक है?
1: ठीक ठीक है, बड़ी मेहरबानी।
0: ओके जनाब यूसुफ खान हमारे साथ है और टांक वालों के लिए भाई ये जो हमारी प्रोडक्ट है केसन ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खराब पानी सबसे पहले जो इफेक्ट डालता है ना वो आपके बालों के ऊपर डालता है, ठीक है जनाब। हेयर फॉल को अगर आपके बाल बहुत तेजी के साथ गिर रहे हैं ये ऑयल बिल्कुल आपके बालों का गिरना जो है खत्म कर देगा, और सिर्फ गिरना खत्म नहीं करता है ये वहां पर नए बाल उगाता है, नए बाल लेकर आता है, नए बाल उगाने की गारंटी हम आपको देते हैं। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जनाब, क्या हाल है मोहतरम?
2: आदम फारूकी ते मोहम्मद हसन गिरसल।
0: अच्छा गिरसल को सुन दो पहले, 91 तो आना होना ऐसे ही
2: जी जी।
0: अच्छा जी माशाल्लाह, वेलकम मखसूस है तो एफएम बस आजकल ठीक ठीक है मेरे ख्याल, बस कल को ऑन एयर थी वैसी ट्रांसमिशन द्वारा।
2: जी जी डेरे को सुन देता हूँ।
0: अच्छा डेरे को सुन दे पे तो आज इस फारूकी भाई तुसा खादिम भाई तुसा जे रहना बहुत अरसे को सारा प्रोग्राम में सुन दे पे तो माशाल्लाह तुम्हारी दुकान भी है गिरसल दे विच जवारला से केरा मदरसा नाल से चिश्तिया जामे मस्जिद अमीर हमजा ए आयल भी तुम्हारे को सारा होंदा है ते शैम्पू भी होंदा है, लोग क्या देने दे बारे सही गिनदे बार बार गिनदे एक दफा गिन के बस खत्म
2: शादियां दे इस्तेमाल थी ना पे शादियां पे
0: शादियां दे माशाल्लाह
2: جی استاد لوگ ڈڑا ڈڑ گننے پن میں تو نا سنگا جو میرے دا ایک مسئلہ مریض دا
0: اچھا جی ٹھیک ہے کوئی نہیں
2: ہم کو نہ تے بے وقت نو دو تر دے تو تے پاڑ پور دو جن تے چکر لگ دے تو نہیں گینا نہ دیو عمر پر سیو سے بڑے نہیں
0: ہاں ابراہیم بھائی عمر جنرل سٹور بالکل
2: عمر وہ تھوڑا میرے واقع ہے وہ تو کڑائے پونے وہ تو میں تا ہوں
0: اچھا چلو ٹھیک ہے کی آکھنا چاہندے ہو تساں ای سارے آئل تے شیمپو دے متعلق لوگان دے کی خیالات ہونن جڑے استعمال کرنن دا
2: جڑا لو استعمال کرن ای دے کول بھی اللہ تو استعمال کاری نہ سنگ دے تیل نہیں سونے سونے کول قیمتی چیز ہونا گلے
0: سونے کول قیمتی شاید ہے وی کوئی نہیں دسا جڑا ایندا ایک سلوگن بنائے
2: پہلے تو لیٹ چھوڑ میں ہن تے چاہیے کوئی تیل میرے ہاتھ وچ
0: لکھا پیا یہ تیل نہیں سونا ہے
2: بالکل لکھا پیا میں صاحب ایک لو سوک پڑھ کے سوال سنگ نا اے تھوڑا چانڑ دے مکتی من دی دا مطلب ہے تیل نہیں سونا ہے
0: مزید پہلے جی سارا آئل آیا ان اردو کون آئی ٹھیک ہے جناب تو اصا گیا بہت وڈا ڈیری دا سٹور ہے اتنے جی اپنا آئل لکھا انہوں کو انہیں کہ یار پیکنگ تو بڑی زبردست ہے بڑی آلہ بڑی زبردست لیکن انہوں نے سائڈ تے دیکھ کے نا سائڈ تے رکھ دیتا کہ میں آرڈر نہ بنے سا اسا کہ کیوں سر کوئی ناراضگی ہوا کہ صحیح پاکستانی ہون تے ناتے تو اردو دا ایک لفظ نہیں ایک لفظ کو نہیں اندے وچ اردو دا ہے نا صحیح اندے وچ تو ساری اردو ہے بہت سارے جڑا نواں پیک سر آیا نا ہن اندے سارے ڈیٹیل اردو دے وچ ایک سائڈ دیکھو نا پوری ایک دیوار بھری پئی اردو دی
2: سائڈ بھری کھڑی بورڈ بنا
0: پہلے نہیں ہوندی اردو میں اون بندے دی وجہ کول یقین کرو بندے کی وجہ کو اردو کروائیے میں کہ یار بہت سونی گل انہیں کی ہے کہ یار اردو لکھتے تو شرم آتی ہے اردو کیوں نہیں لکھتے تو اصا ایک بلا کے چینج کیتا ایسے تے اردو نال شامل کی تاکہ ہر بندہ کو آسانی میں پڑھ سکے تو فائدے تسا پڑھ کے دسا سکتے ہو کہ لکھے پہ نہیں تیل دے فائدے فائدے اردو چ لکھے پین نہیں دے دیکھو ذرا ایک سائڈ
2: بالکل
0: سنو نا تسا اپنی زبان نہ سنو میں تو سننا بیٹھا لوگوں کو
2: کیسن برائل قطار سے زید کو دلتی جا پر مشتمل ایک ایسا حیران کون فارمولا ہے ٹھیک ہے سر یہ تو پہلے پہلے ہی ہے فائدے لکھے پہ طریقہ استعمال لکھا پہ سارے بالاں دے کیت لکھا پہ
0: حیران کون فارمولا ہے جیڑا مہینہ دے وچ نے ہفتہ وچ رزلٹ دیندا صحیح لکھا
2: بالکل میں سب آپ استعمال کرنا پیا میں ہوں تو آپ دسنا لام میرے والا دی حالت بہت کئی طرح ہے
0: چاونا منفرد فارمولا ہوندا ہے ٹھیک ہے سہی جے کو ساتھ نے روز میری آئل اللہ تعالی نے ہر تیل دی خصوصیت رکھی ہوئی بادام دا تیل ہے نا سہی اوندا کم والا کو چمکدار تے نرم بناونا ٹھیک ہے سی زیتون دا تیل آملے دا تیل تلاں دا تیل ہر تیل دا ایک اپنا کام ہے تو روز میری آئل جی رہے نا روز میری انہاں کام ہوندا ہے ری گروتھ کرنا یعنی کہ جڑے جہاں تے وال تو ڈھہ گئے وہ اپنی طاقت نال والاں کو اتھوں کڈے سی تے روز میری آئل سارے آئل وچ موجود ہے جڑا کہ فوری طور تے تواڈے نویں بال نہیں واہ جمے ٹھیک ہے جی
2: بالکل
0: بس ٹھیک ہے جی بہت مہربانی شکریہ
2: ایک تیل دا فائدہ بھی ہے صاحب
0: جی حکم
2: تسا آج کہیں دس ہی نہیں میں تو آپ دس ہی رہا بھی
0: اچھا دسو
2: تیل لہسو تا مچھر نزیک ناش
0: اچھا
2: جی صاحب
0: اگو موسم آسی نور مچھر دا موسم آسی
2: موسم ہے بھی ہے صاحب میں استعمال کیتا میں مچھر میرے نزیک نہیں آنے ہوں خوشبو کا
0: مزدار گل دسی موسم دے حوالے نال کچھ لوگ بھائی ایکسپیرینس کرن تے سا کو ضرور دسنا ہے کہ کوئی استعمال دے بعد مچھر
2: نو میں تو اس وقت میں یاد آ کے میں کہ یہ تو تسا کدا ای نہ ذکر ہی نہیں کیتا تے مچھر سارے علاقے تے دیا تل علاقے تا ای وجہ بندے کو گھیر لیندا ہے
0: تو میں رکھیندا ہے گھیر نہیں لیندا ٹھیک ہے وہ اچھا فائدہ تسا دس دیتا ہے تے لوکاں نے نوٹ کر کے دو اسی تے انشاءاللہ ایسا کوئی مچھر ال موسم دے سیزن کے مچھر کول محفوظ رکھن والا تیل ہے
2: ٹھیک
0: ہے بہت شکریہ جناب ہمارے ساتھ بھائی یہ دکاندار بھی ہیں اور ہماری پروڈکٹ استعمال بھی کرتے ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے بتاتے خوشبو جو کیسن کی ہے نا ہم کہتے ہیں کہ کیسن ہیئر آئل 100% نیچرل ہے और ये जो खुशबू होती है ना, ये केमिकल होता है। तो जब जिस प्रोडक्ट के अंदर खुशबू आ जाए तो वो 100% नेचुरल नहीं होता, ठीक है जनाब। लेकिन हम इसके ऊपर लिखते हैं 100% नेचुरल, क्यों? कि इसके अंदर हमने कोई खुशबू नहीं डाली, कोई भी इसकी खुशबू नहीं है, इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं डाली गई है। केसन हेयर ऑयल के अंदर ये तेल नहीं सोना है, इसकी अपनी एक जड़ी बूटी है, ये उसकी खुशबू है। हेलो दोस्तों जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन है हमारे साथ?
3: आवाज नहीं आ रहा?
0: आवाज आनी पे, बिल्कुल सही आनी पे।
3: हेलो
0: जी, मेरी आवाज आनी पे सही?
3: थोड़ा थोड़ा आने,
0: थोड़ा थोड़ा क्यों आने लगे? तो मैं जोर जोर डालेंगे बैठा मेरा।
3: खलील भाई संग है, ठीक ठाक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ना दसे सो अपना ना शरीफ। अब्दुल रजाक डबरे से? अच्छा, अब्दुल रजाक डबरे को। अब्दुल रजाक भाई की हाल है? ठीक ठाक है,
3: ठीक ठाक है, तबीयत अच्छी संग है।
0: ताकत प्लस इस्तेमाल थी ना वदे तुम्हारे पास?
3: हाँ, ताकत प्लस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे।
0: भाई कैसे इस्तेमाल, सिर्फ ताकत प्लस है या कोई भाई शायद भी है कैसे? नहीं रजाक भाई,
3: भाई शायद कहीं कुछ रहना ना, मेरे सिर बाल बिल्कुल गिर गया, बन जाती है, कोई तरीका करे।
0: और तेल है तुम्हारे को? तुम्हारे इलाके तेल नहीं मिल रहा? जिया जनरल स्टोर शेख उतार रोड पे,
3: इब्राहिम रगजी वाला साढ़े त्रेरे बलोचे,
0: इब्राहिम सोलर बैटरी,
3: सोलर बैटरी वाला।
0: अच्छा, उन्हें कुल हो सी, लेकिन इनके अलावा जिया जनरल स्टोर है शेख उतार रोड डबरा दे विच, उत्ते सब सारे प्रोडक्ट मिल वैसे। ए ऑयल सारा जे रहे तुम्हारे वाल जे रहे, कितनी उम्र है तुम्हारी?
3: कम से कम 55 साल उम्र है।
0: पचपन साल उम्र, उम्र तो बहुत लंघे ही खड़े हुए है जी। कोई तले चले हो, कोई 40 दे तले हुआ तो बुला के तो नवे वाल जमा दे हुआ। बहरहाल कुछ कुछ वाल ही सही तुम्हारे सिर ते?
3: हाँ वाल है सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा है।
0: अच्छा, बस उन वाला को तुसे बचा सकते वे जेरे मजीद तुम्हारे बच्चे खड़े ना, ठीक है? अगर ए आयल इस्तेमाल करे सो तो ओ बच वैसे नवा दी, ऐसा गारंटी तो नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा थी चुकी है ना, ठीक है?
3: यही संगती है ना, नवे तो गारंटी न देता, खैर कोई तो नहीं है, गाड़ी जो रहना गाड़ी कंगी रहना मतलब बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो
0: तेल तेल तो क्यों नहीं गिरा तक पहले दसो, पिछले हफ्ते तो कोसा दसा आई इस्तेमाल करो, सिर ते भी इस्तेमाल करो, जेरे वाल बच्चे वधन नो बच वैसे नवे मुश्किल निकले तुहारे क्योंकि तुहारी उम्र ज्यादा है। अगर उम्र होवे 35-36 साल 40 को तले तले तो बुला के रीग्रोथ थी वेंदी हुंदी, नवे वाल आ वेंदे, ठीक है? उम्र को घट नहीं कर सकते ना, उम्र तो ये राशि तुम्हारी है जी,
3: उम्र साल कल हो गए 65-70 साल तो हो जाना,
0: बस 55 तो सा गुजारी खड़े हुए थे, पिछु 15-20 साल ही बह भी मजीद, ठीक है?
3: जिंदगी हो तो जिंदगी हो तो 20 साल भी नहीं, दो साल जिंदगी तो पता लग गए,
0: पता नहीं लगता बिल्कुल। रजाक भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, नमाज है जनाब हमारे साथ थे और इनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन इनके नए बाल तो बहुत मुश्किल, क्योंकि ये जब आपके सर का वो हिस्सा जो बिल्कुल चमक में आ जाए ना, मसाम बंद हो जाए, बालों वाली जगह जो होती है जहां पर बाल निकल रहे होते हैं, अगर वो बंद हो जाए तो फिर नए बाल नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर वो बाल हो तो फिर वो जगह खाली हो तो फिर नए बाल आ जाते हैं। अच्छा, खवातीन का यही होता है, खवातीन जो होती हैं वो गंजी नहीं होती हैं बल्कि उनके बाल पतले हो जाते हैं। अब ये अक्सर औरतें ये कहती हैं कि मेरे बाल पतले हैं, कैसे होंगे घने भाई? वो आपके 4 बाल इकट्ठे थे तो उनमें से 2 गिर गए हैं तो बीच में जगह, फिर आगे चलकर फिर 4 में से 2 गिर गए हैं, फिर आगे चलकर 4 में से 2 गिर गए हैं, तो करते करते क्या हुआ? ये तो अल्लाह ने आपका पर्दा रखा हुआ है कि औरतों को अल्लाह ताला गंजा नहीं करते हैं, मर्दों को अल्लाह तो पता था, ये तो है जी कोई नहीं मसला, गंजे हो भी जाए कुछ नहीं है, औरतें गंजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन औरतों का क्या मसला होता है? हेयर फॉल जब मर्दों को होता है तो मर्द गंजे हो जाते हैं, और जब औरतों को होता है तो क्या होता है? औरतों के बाल पतले हो जाते हैं। अब वो मेरी

0: तमाम बहनें जिनके बाल पतले हैं, लंबे हैं उनके लेकिन बाल उनके पतले हैं, तो वजह यही है कि बाल बीच में से बहुत सारे निकल गए हैं उनके सर से, ठीक है जनाब, गिर गिर के उनके बाल सर में से बहुत सारे निकल चुके हैं और वो जगह अभी खाली पड़ी है। अब उनको कोई ऐसा ऑयल नहीं मिल रहा कि उन खाली जगहों के ऊपर वो बाल फिर से निकले। क्यों हम आपको कहते हैं कि चार माह के अंदर आपके बाल पतले हों तो घने हो जाते हैं? वजह यही होती है कि वहां जो खाली जगह होती हैं वहां पर नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बीबी हेयर पड़े होंगे, अगर आप अभी सर के अंदर ऐसे हाथ घुमाएं ना, उंगली मारें, तो आपको बीबी हेयर छोटे छोटे बाल नजर आते हैं, वो ग्रोथ कर जाते हैं और बहुत रैपिड ग्रोथ होती है। केसन हेयर ऑयल के इस्तेमाल करने वाले लोग जानते होंगे कि जनाब जो लोग केसन हेयर ऑयल को इस्तेमाल करते हैं उनके बाल कितने जल्दी से बड़े होते हैं। आप हमें कॉल कर रहे हैं जनाब, हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, एक दफा फिर से आपको बता दूं जनाब, 03449363366। जी जनाब, थोड़ा सा और इजी होकर मैं आपको बताऊंगा, 0344 यानी कि 03449363366 इस नंबर पर आप रब्त कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम डेरसमुल खान और टॉक में एक साथ सुन रहे हैं और ये प्रोडक्ट केसन का ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट केसन की जो है, जो हमने 2021 में लॉन्च की थी, वो हमारा हेयर ऑयल है और मार्केट का ये ब्रांड बन चुका है। और जिस भी किसी को, जिस भी औरत को, जिस भी मर्द को बालों का जब भी मसला होता है, मर्द का मसला जब भी होगा, गंजपन का मसला होता है कि उसके बाल गिर गए हैं और नए बाल नहीं आ रहे हैं, या आहिस्ता आहिस्ता उसका सर जो है खाली होता जा रहा है, ये मर्द का मसला होता है। और औरत के जब हम मसला सुनते हैं तो औरत का क्या मसला होता है, औरत के बाल पतले दिन ब दिन पतले हो रहे होते हैं, दो मुंह हो रहे होते हैं और बार बार टूट रहे होते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मौका देंगे इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है
0: जनाब? क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक?
1: हेलो
0: जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको मोहतरम?
1: आ रही है। कैसे हो?
0: क्या नाम है भाई के, नाम बताएंगे अपना?
1: अली मोहम्मद।
0: अली मोहम्मद, टांग से बात कर रहे हैं?
1: टांग से।
0: टांग से अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्लाह का फजल है। और
0: क्या क्या काम करते हैं भाई अली मोहम्मद?
1: मैं प्राइवेट टीचिंग करता हूँ।
0: प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं आप?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो आप देखते होंगे आपके अपने बाल वैसे अच्छे हैं, आपके अपने बाल जो है, सर के बाल जो है?
1: वो तेल के बारे में मुझे कोई मालूमात चाहिए थी।
0: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये तेल नहीं सोना है।
1: अच्छा, तेल का नाम क्या है?
0: क्या चीज?
1: तेल नाम क्या है?
0: तेल नाम केसन, केसन, के ए वाई एस ओ एन, केसन।
1: केसन तेल,
0: हाँ, केसन हेयर ऑयल। ये छोटी बोतल आपको मिलेगी 480 रुपए की और बड़ी मिलेगी 750।
1: अच्छा, बाल ज्यादा गिरते हैं जब तेल लगाते हैं या नहाते? बहुत ज्यादा गिरते हैं
0: तेल लगाने के बाद।
1: हाँ, या कंघी लग जाते हैं या?
0: ठीक है, आपके बाल, आपके बाल कमजोर हैं, ठीक है जनाब, कंघी करेंगे तो वो बालों को जड़ों से मजबूत करने की जरूरत है। और आप टीचिंग करते हैं, खुद आपको पता होना चाहिए कि हर चीज के लिए गिजा होती है, ठीक है जनाब। तो आपके बालों को भी आप देखें, अगर आपका जिस्म है और आप अपने जिस्म को एक मुतवाजन गिजा नहीं देते हैं तो आपका जिस्म कमजोर हो जाता है, आप लगेर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि ऐसे जिस्म के लिए क्या चाहिए, ताकत प्लस आप हमारा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके बाल कमजोर हैं तो फिर आप हमारा हेयर ऑयल इस्तेमाल करेंगे जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत करेगा और आपका हेयर फॉल 15 से 21 दिन के अंदर बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा।
1: अच्छा, ये कहाँ पर मिलेगा?
0: आप कहाँ पर? टांग शहर के अंदर है।
1: हाँ।
0: बस टांग में आप ट्रैफिक पुलिस के सामने जो ट्रैफिक है वहां पर गुलाम जान जनरल स्टोर है, ट्रैफिक चौक जो है टांग की, ठीक है जी।
1: नजर नहीं आई।
0: हाँ, और इसके अलावा जो है सदाम प्लाजा में चले जाएंगे, वहां पर मंसूर जनरल स्टोर है, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है,
1: अच्छा, देखेंगे फिर आपको बताएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल करें और हमें बताएं, इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे। सामिन किराम, जो हेयर फॉल है उसके रुकने का जो टाइम होता है वो मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ होता है। इस आयल को इस्तेमाल करने के बाद किसी का हेयर फॉल एक हफ्ते के अंदर रुक जाएगा, किसी का 15 दिन के अंदर रुकेगा, किसी का 21 दिन के अंदर रुकेगा, किसी के 28 दिन के अंदर। मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 28 दिन का होता है, जब आप इस आयल को 28 दिन तक यूज करते हैं। वैसे पहले 15 दिन के अंदर ही तकरीबन लोगों का बालों का झड़ना जो है हेयर फॉल रुक जाता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। अरे भाई कैसे हो
0: जनाब? मास्टर फतुल्ला साहब तो नहीं है हमारे साथ?
2: जी जी जी।
0: मास्टर साहब कैसे, कहाँ गुम हो गए थे आप? बिल्कुल
2: रिकॉर्डिंग
0: वो आप जब कॉल करते मेरे, अभी तो मेरे ख्याल में पिछले 15 दिन से एक भी रिकॉर्डिंग नहीं चली, सारे लाइव चले।
2: एक दो दिन मैं ट्राई करता था कि मैं बहुत सर वो गंदा चला जाता और मशरूम तो उसी दिन फिर मैंने शबरा उस्ताद को कॉल किया, वो आखिर में 3-4 मिनट में ठीक किए।
0: जी मतलब कैसे हैं आप?
2: ठीक है,
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से? मैंने कहा आप तो हमारे उन कस्टमर्स में से हैं ना जो शुरू शुरू वाले थे, शुरू वाले तो हमें नहीं भूलते बिल्कुल भी। अब तो टांक में, अब तो टांक में हमारे कस्टमर बहुत ज्यादा बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और वो हाँ अनस भाई वो आजकल किसी और कंपनी का प्रोग्राम कर रहे हैं ना वहाँ पर, तो फिर एक आरजे एक का प्रोग्राम करे तो ज्यादा अच्छा नहीं
2: होता।
0: वो किसी और का प्रोग्राम अभी कर रहे हैं ना आप, देखें ना किसी और टाइम में होंगे वहाँ पर आपके एफएम के ऊपर।
2: वो भी तकरीबन उसकी रिकॉर्डिंग होता है, वो 3 दिन शाम को 7 बजे होते हैं।
0: अच्छा,
2: लेकिन वो भी 2-3 दिन हो गए जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही है।
0: अच्छा चलो आ जाएंगे लाइव, आप देख लीजिएगा ना शेड्यूल, उनसे पता कर लें।
2: इधर पर कैसे इस पर काम को आएंगे या इसको छुट्टी कर दी?
0: नहीं बस इधर वो नहीं आएंगे, इधर मैं खुद ही शो करूंगा, वो अपना प्रोग्राम और कर रहे हैं ना वहाँ पर टांग में।
2: अच्छा जी, अच्छा जी।
0: और आप सुना है मैंने कि खैरियत से हैं? हमारी नई प्रोडक्ट्स कुछ इस्तेमाल की आपने, ताकत प्लस वगैरह या उसका मौका नहीं मिला?
2: ताकत प्लस इस्तेमाल किया है, दूसरी पैर की पसीने की साबुन जाफरानी साबुन इस्तेमाल किया है, वेट कम पेट कम वो भी इस्तेमाल कर, पेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दर्दों के लिए
0: शिफाय दर्द को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुतमईन है? मुतमईन है
2: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, ये अंकल असद हो गए, आप हो गए, इसब खान भाई, ये जितने लोग हैं जो हमें आप यहाँ पर तसली बख्श रिव्यू देते हैं, तो दूसरे लोगों को और हिम्मत होती है और फिर बाजार से जाके चीजें खरीदते हैं बेसिकली, तो वो आपके ऊपर एतमाद कर रहे होते हैं कि भाई हमारे अपने इलाके का बंदा जब तसली दे रहा है तो चीज खरीदते हैं, तो आप माशाल्लाह मुतमईन है, ताकत प्लस से भी मुतमईन है, ताकत प्लस को इस्तेमाल
2: करते हैं? मैंने मेरी दोई इस्तेमाल करती थी, वो बहुत तो बेहतर हुई है, तैयार इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह।
0: अच्छा नहीं जरूर करें उससे इंशाल्लाह,
2: जरूरी थी।
0: अच्छा जी ठीक है ठीक है ठीक है, तो उससे भी आप मुतमईन है यानी कि ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब
2: मस्तरी
0: हमारे साथ मौजूद हैं। और ये हमारे जब टांग में मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तो ये मेरे पहले पहले कॉलर थे, शो के अंदर आए थे और इन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी और सबसे पहला जो फीडबैक था अच्छा फीडबैक और जो इनको रिजल्ट मिले थे मास्टर फतेहुल्लाह साहब थे। और उसके बाद इनके देखे कहानी चल रही, जैसे कल अब्दुल्ला भाई कह रहे थे कि हमारे घर के अंदर टांग के भाई कह रहे थे टांग के अंदर अब तो हमें पूरे घर के अंदर केसानी नजर आती है, हर प्रोडक्ट केसन की मिलती है। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है सर?
0: जी जी अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। कौन है सर? नान नान से सो
3: मैं तेल दे बारे पूछा, मैं उम्र 50 साल है तेवाल धाने में तेल दे बारे तो सेनेटर प्रोग्राम अक्षर में सुन रहा ना
0: बस तेरे वाल जरे ढह गए ओ झा कि में मतलब चमक आ गई है या था वाल में झा खुरदरी झा है था
3: थोड़ी कोई चमक थोड़ी है खुदरी है सही लेकिन
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अगर खुरदरी झा है तो सब तो हाथ लाओ तो कुछ छोटे छोटे वाल या इन्हें लुआ टाइप जो होने ना अगर महसूस थी तो भला के सही वाल निकल आसन बिल्कुल
3: लुआ
0: नमूना महसूस थी बस वो निकल आसन। ओ सर इनशाला सही तेल को इस्तेमाल करो, हिके महीने अंदर تو پتہ لگ سی اسی جہاد جتنا تو لوہا محسوس تھی نا اتنا آئل لا کے اسی جہاد انگلیاں دی مدد نال

0: तो कीर भाई ने लगे हो ना कैमल वो सारे को प्रोडक्ट गिनन आने जेले हो गिनन आवे तो तुसे ना लगे वैसा सारो ठीक है
1: ठीक है
0: बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी शुक्रिया सलीम वानियन जी हमारे बहुत ही पुराने जो है लिसनर थे और पहले हमारा एक शो चलता था तो उसमें हम खाना खिलाते थे लोगों को ना दो दोस्तों को मेरी तरफ से खाना होता था शो के विनर होते थे दो सोबत घर के ऊपर इंसाफ होटल के ऊपर नमक मंडी के ऊपर दो दो दोस्तों को तो ये भी उसमें उन्होंने विन किया था उस वक्त और फिर मैं खुद भी जाता था लंच होता या डिनर जो भी होता था उसमें हमने बड़े शोल बनाए थे और तकरीबन लोगों को हमने जो है खाने खिलाए शो के दौरान वो मुकाबले होते थे उसमें जो फिर जो विनर होता था फिर वो अपने एक दोस्त को लेकर आता और हम उसे उसके लंच या डिनर करते थे। सो जनाब बहुत शुक्रिया सभी लोगों का डेरस मिल खान में आप हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं और ये जो हमारा ऑयल है इसके ऊपर हम 100% क्लेम देते हैं कि ये रीग्रोथ करेगा। रीग्रोथ कहते हैं बालों का फिर से आना, ठीक है जनाब बालों का। अच्छा ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई ऐसी चीज लेकर आए जो बालों को काला करे, उसके ऊपर हम अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है जनाब। वरना तो केमिकल वाला हम कोई भी कलर लॉन्च कर दें वो आपके बालों को जो है वो कर देगा फिर 15-20 दिन बाद फिर सफेद हो जाते हैं। तो हमारी टीम अभी एक ऑयल के ऊपर काम कर रही है, ठीक है जनाब, हेयर कलर ऑयल, ठीक है जनाब, हेयर कलर ऑयल के ऊपर नेचुरल होगा बिल्कुल नेचुरल, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां नाकाम हो चुकी हैं इसके ऊपर कामयाब नहीं हो पाते लेकिन हम भी एक कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश में तो कोई वो नहीं है, हो सकता है हम बना लें। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑयल होगा जिसका लगाने का तरीका रात को लगाने का तरीका होगा और उसको वो ऐसा ऐसा से एक कोटिंग करेगा आपके बालों के ऊपर, परमानेंट कोटिंग करेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे अभी ट्रायल जा रही है, देखते हैं जैसे हम सेटिस्फाइड होंगे तो आपके लिए लॉन्च कर देंगे क्योंकि हम तब तक ऐसी वैसी चीज कोई भी लॉन्च नहीं करते हैं जिसमें रिजल्ट बहुत जरूरी होते हैं। अब जैसे ये ताकत प्लस है या वेट कम पेट कम है, ये वो चीजें हैं जिनके रिजल्ट फौरी नहीं होते हैं लेकिन कुछ अरसा आपको इस्तेमाल करने होते हैं, लेकिन अगर कुछ अरसा लोग इस्तेमाल करें और उनको फायदा ना हो तो फिर तो उनका नुकसान हो गया। यही वजह है कि ऐसी प्रोडक्ट्स का हम पहले ट्रायल करते हैं, आजमाइश करते हैं। वेट कम पेट कम को आप यकीन कीजिए कि हमने 2 माह तक लोगों के ऊपर इसके ट्रायल किया और जब लोगों ने हमें बता दिया कि वाजे तौर पर हमारा वजन कम हो गया तब हमने उसको लॉन्च किया है। जब यानी कि 100% मुतमइन होने के बाद हमने वजन कम करने वाली फक्की लॉन्च की थी। इसी तरीके से ये जो ताकत प्लस है ये भी हमने जब ट्रायल दिए तो लोगों ने हमें शॉप के ऊपर आके कहा कि भाई ये बना दें, बस इसके रिजल्ट हमें मिल गए हैं, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, इससे तो वजन बढ़ रहा है, इससे तो जिस्म बढ़ रहा है, इससे तो बीमारियां खत्म हो रही है। यकीन करें लोगों के सेटिस्फेक्शन के बाद हमने ये चीज बनाई। ये जो कलर ऑयल हम बनाएंगे ये भी आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के बाद ही बनाएंगे। ये हम 8-10 लोगों को सैंपल भेजेंगे, 1-1.5 माह इस्तेमाल करेंगे, जब वो हमें बताएंगे कि वाकई बाल सफेद जो थे वो काले हो गए, कोटिंग हो गई उनके ऊपर, तो फिर हम इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन उसके ऊपर अभी हम काम जारी कर रहे हैं, उसके लिए सैंपल्स देंगे बहुत सारे लोगों को बहुत जल्द इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि कोई ऐसा हेयर कलर हो, ऑयल हो जो कि बालों का कलर करे, जैसे कलर तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन कुदरती ऑयल अगर उनको ब्लैक कर दे तो फिर तो और मजा होगा। तो जनाब टांग के अंदर मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रोडक्ट आपको कहां कहां पर मिलते हैं। टांग के अंदर हमारा ये ऑयल और शैम्पू आप लोगों के मसाइल का हल है, चाहे बहने हैं चाहे भाई हैं, चाहे आपको गंजपन का मसला है या आपके बाल पतले हो गए, अगर बालों को फिर से घना करना चाहते हैं या गिरते हुए बालों को रोकना चाहते हैं, ठीक है जनाब, वक्त से पहले अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं तो ये उनको फिर से काला करने की सलाहियत रखता है। वहीद जनरल स्टोर है जनाब अलबदर मार्केट के सामने, टांग के अंदर अलबदर मार्केट के सामने वहीद जनरल स्टोर। मदीना जनरल स्टोर है सदर प्लाजा की बेसमेंट के अंदर। इसके अलावा फहीम जनरल स्टोर है जनाब अलबदर मार्केट टांग के अंदर। गुलाम जान जनरल स्टोर ट्रैफिक चौक, ट्रैफिक की जो चौकी है वहां पर गुलाम जान जनरल स्टोर है, आप वहां पर भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डेरस मिल खान में जफराबाद के अंदर हाजी जरी जनरल स्टोर खरोटी प्लाजा के बिल्कुल सामने ये दुकान है। स्टार्ट के ऊपर आप देखेंगे लेफ्ट और राइट के ऊपर आपको केसन शैम्पू और केसन ऑयल के बोर्ड भी नजर आएंगे वहां पर। टांग वालों का बेहद शुक्रिया जो इतनी बड़ी तादाद में हमारे प्रोडक्ट वहां से खरीद रहे हैं। इसी के अलावा जहां से अभी तौकीर भाई बात कर रहे थे, सलीम वानियन बात कर रहे थे आड़ा रोड के ऊपर, मौलाना अलाउद्दीन साहब के मदरसे के बिल्कुल सामने है खान कॉस्मेटिक जुबैर भाई की शॉप है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है जनाब, इसके अलावा अगर आप यूसुफ चौक की तरफ रहते हैं तो यहाँ पर दरबार वाली गली के अंदर जो है यहाँ पर उमर जनरल स्टोर है, आप यहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। शिव यूसुफ अड्डे के ऊपर, शिव यूसुफ चौक के ऊपर जो है बिल्कुल चौक के ऊपर जाहिद शॉपिंग सेंटर है जनाब। ठीक है, आप यहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, सारे मिलेंगे। महमूद जनरल स्टोर सीआरबीसी कॉलोनी के ऊपर है जनाब, बिल्कुल आप वहाँ पर भी हमारे प्रोडक्ट।
1: इट्स 5 o'clock, आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमर, जन रंग अमर। यू आर लिसनिंग रेडियो अमर नेटवर्क,
2: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड।
1: 88.4 FM।
3: रेडियो अमर
4: बीमारी कगटवी औ कवड़वी दीदी इलाज कवल बेइंतहा जरूरी दा, जकचे कमुश अखपल इलाज पे वक्त बांधे नौ को नोब्या देल वजे न नूरे बीमारी गाने हम उश्ता लगे दायसे नुकाउस्तासो मुख्तलिफ बीमारी गानो लो वजना परेशान आयो नव्यादि खपल इलाज दे पारा नन रायसो अलशिफा दवाखाने दा, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। मोबाइल नंबर है हदर सरा नोट को 0319552304, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी।

0: तेरे ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 डांस की नशीला। हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांक की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम लुटेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहिए।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जुकुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम, अमन का पैगाम, अमन का पैगाम।
2: रेडियो अमन, रेडियो अमन।